0: एक्शन।
1: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमें दोस्त रानी गई और अब करण, तुम सब दरवाजा लॉक करके सो जाओ और ये कुम जो भी कर रहा है इसका पता हम कल सुबह लगाएंगे।